प्यारे श्रोता, ये एफएम जोर शिमला साथ है और मैं हूं आपकी आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज आप हमारे साथ एफएम जोर में बने रहेंगे। इस प्रसारण में हमें मिलेंगे गंदे और सनमरे फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमल मलिक के आवाज में हुआ है आज पहली बार गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

वो था सैया, गनमैन, गंदे फिल्म से लिया गया गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आई है दुर्गेश नगनपुर से। और ये कहते हैं, अर्जे गुड मॉर्निंग, नमस्कार अंतिया जी, आपको भी नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आज आप हमारे साथ एफएम जोए में बने रहेंगे। लल दिन पे अफल कॉन्वेंग लाई से संदेश आई है और ये कहते हैं, आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगा थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ते कच्छियान ते वेंग शंग शंग मी ते तान लल दिन पुया फल कोन वेंग लाई एफएम लाई सांग एमएम टू रंतिया इन छियान हाउ ते ले ओ आरजे लो थन सकते ले ओय दु सक जोंग रन थन ते ने ना उलुक तक इन लोंगा था कतान नेक्स्ट कन प्ले ले ही इन तान नी से जानगस बॉय से संदेश आए हैं, एसपी नमस्ते नेक्स्ट इतान और अंतिम बकनी बहुत बहुत शुक्रिया इतान पोनी वे हाल से तेरो। अगले गीत की ओर बैठे हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा गंदे फिल्म से लिया गया गीत साइया, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंगते से अनिहान और जो सांग पुनी थर से भाई और अंतिया जी आपको भी नमस्ते निजान लमते इमु तो यम इमु मंगते छाएम इतु इन तुर ते थ्यांग निम तो केम रंतिया हाँ वी कुंगते ही चो ngai तो किम छिन निया कार थर है बुल ते कन हन चना निजान ते पो एंगे थो है का लव वांग खान इन कमु मामो कमु तु यंग रेंग न्यांग मु मंग के नै ओम पो क छिया लव nang imu tu yam vi kung te lo report vere reng la tro rj lom te tinge mu a rj te te tinge ti vel ta kha minu update vel la tro mu mangai inu la mu hang te po kha o agle git your birthday hai aur yaha pe agla gir rahega ishq ki gali rahat fateh ali khan aur jayesh gandhi dwara geet kanand lete hai

वो था इश्क की गली, यहाँ पे अगला गीत रह कुछ तो बाकी है। यहाँ पे अगला गीत रहेगा अलका याग्निक और जयेश गांधी की आवाज में, मिलेंगे मिलेंगे। और ये गीजे खास करके तो उन्होंने एफ एम जो लगाए थे मैं एक वी कुंगते का ना उसी आले में तानिया नी से अनि यान एस एम एस रन थना ने जान कमु मंगसू सोई स्वादान पो कथियाम सी अलाउ का अबुआई नो एम इन कशिया नोला लम रेंग रेंग अन लंगलावा हरंती ने ओ वहन जिया लव एम गुड नाइट मेसेज ते खा इलाउ दोंग छलाउ दे ओंगे मनि त्रो अवन जिया लव एम ओ जनिन छु मुतुइना एंगे मोम ल्यान देव देव ते खानेन एस एम एस थुम तक तक ते रन थन तोरा चेंगाई ला त्रो अगले गीत की और बर्थडे है। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा मिलेंगे मिलेंगे अलका याग्निक और जयाश गांधी की आवाज में। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा फलक शबीर द्वारा गीत क्या तुझे अब ये दिल बताए, और ये गीत जो खास करके दोनों ना एफएम जो वही लगाए था मैं एक तो जोंग ते जिनको अच्छा लगाए था ते लवलम अच्छा लगाए था ले था ते तान ले और जो अच्छा शंक ते पाल लगाए था ते नमनी दिगं शिया इंतान नी से यहाँ पे आपके संदेश आए हैं खाकते पा बिल खतलियर से अनि हैं आज ही नमस्ते वह लापले ले तो खा ओ इलापले ले तो है तो टाइप पानी है इलापले ले तो खा नई पचवाव एलार मामित मामनी रम लोट मौय साइट लो ले तान करन लाने खाकते पा बिल खतलियर यान अरंटीनी तो इस गीत का आनंद लेते हैं क्या तुझे अब ये दिल बताए और ये गीजे खास करके खाकते नलो थन सकता जोंग जोंग ते तान खान नी से कई पो मिलो थन सक वे आ कलोम रे तो को तान पो करन लान लान लेट वे हाल से नी ओ तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा अलीशा चिनोई की आवाज में लेट्स डांस और एसएमएस पखतर अंतलंग लेकिन सियार ले शाम अंगो जो अनगस बो यान एसपी वो इंसु कपितर ते कंगाय रियाव में नेक सतान और अंतिया हे वो इंसु अबेस्टी ते वे आरजे आफी ले के कन रन ड्यूटी मो आरजे आरजे पितर ते ही तो वाना पाहो लमाजु इन थे चील दोना ओ कन लो बियाक से गा था ते कन लो लाक पुई थे नि चुआन इन खलाक ते पोरन थन डांस कन लो गाय तो दोनिया तो इस गीत का आनंद लेते हैं लेट्स डांस और ये गीजे खास करके जॉन अगस्त बॉय ले पितर ते तानी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं

प्यारे श्रोता, ये एफएम 102.7 है और मैं हूं आपके आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें हिमेश रेशमिया, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज द्वारा गीत सुनने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा मोहम्मद अजीज के आवाज में, मैंने पहली बार जिसे प्यार किया, और ये कीजिए आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है मैंने पहली बार जिसे प्यार किया। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा नखरे वाली मोहम्मद अजीज के आवाज में।

वो था तेरा चेहरा हिमेश रेशमिया की आवाज में। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं जॉनगस बॉय से अनिहन एस पी प्ले लिस्ट नंगमा तान करण लाने चुआन कैपिटल ते चुआन खलाक अने चुआन मिलो थोन ला और अंतिया नीले नुआम ले अरंती ने नंग पोव इन नुआम तो कहीं मन थे ना दू सकना कन लान से नेक्स्ट कन प्ले ले तो ही इतानी से अगले गीत की ओर बैठे है। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा आशिकाना है दिल, आपका सुरूर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा आजकल हमसे रूठे आमने सामने फिल्म से लिया गया गीत का।

आनंद लेते हैं और अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपके प्यारे से आरजे आरजे श्वाया आप सभी के पास। तो इस गीत का आनंद लेते हैं, आजकल हमसे रूठे।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7। दोस्तों, 5:30 बज चुके हैं और हम हिंदी का हमारा पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट में हम सबसे पहले सुनेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज में चांद फिर निकला।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: दोस्तों ये गाना था मना जनाब ने और इसे गाने वाले हैं किशोर कुमार। हम आपके संदेशों को पढ़ते हैं। आरजे नमस्ते इलाप ले ले तुरखा विकुंगते आ मिंगमोइते

दोस्तों, ये गाना था सोनू निगम जी की आवाज में असी तेरी गल करनी। मिंग मोइते अन रोनवासेशा इंजिला नमस्ते दिवती नामले अरुंत्या मिंग मोइते इदम छामो। हमारा अगला गाना होगा राघव सचार की आवाज में कबूल फिजा।

दोस्तों, ये गाना था काबुल फिजा, जिसे गाने वाले हैं राघव सचार, मिमोइतेन एंजिला पथियान जारा कदमे अरुणत्या लोमोम लुतुक दमिन लो शिसेल जेल ला जनिना पोतो छिंग इन मिलो ngai tla in milo vin pui don nya. ओ, हमारा अगला गाना होगा शराबियो गाना, जिसे गाने वाले हैं और कोई नहीं बल्कि आशा भोसले. तो दोस्तों, सुनते हैं हम बहुत ही मस्ती वाली गाना जिसकी बोल है शराबियों.

दोस्तों, ये गाना है शराबिया, जिसे गाने वाले हैं आशा भोसले। हमारा अगला गाना होगा राघव सचार की आवाज में, ये मैं आया कहाँ हूँ। और ये गाना हमारे एक सेगमेंट का आखिरी गाना होगा, लेकिन मैं दोबारा बहुत जल्द आऊंगी। और मेरे बाद आने वाले हैं मिजो आरजे आरजे पुई पुई, और आप सभी को बहुत ही सुंदर सुंदर मिजो के गाने सुनाने वाले। इसलिए आप दोस्तों कभी मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7 में, हूँ आरजे एंजिला। और आप सुनने वाले हैं हमारा इस सेगमेंट के लिए आखिरी गाना राघव सचार की आवाज में, या मैं आया कहाँ हूँ।

0: जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है।
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाए जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः

0: पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहाँ खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी
1: हाँ
0: नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं,
1: जी
2: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस तो, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे, तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर है वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है।
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड

0: special ministry and there's a ministry of cooperation. So you think that enhancing the income of farmers, these allied sectors are playing a very major role?
1: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
0: सो पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
1: क्रेडिट सोसाइटी जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वही डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
0: तो उनकी जरूरत
1: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो

0: हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं,
1: जी
0: और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है, कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है सप्लाई करती है वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका

0: प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में,
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर. एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स. सो दिस एस्पेक्ट, हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
1: right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: Tuna kan ngay thak tak kha kumsom panhi chunga sarkar lai pui malak na langsar zwalte New Service Division in Abuatsai Delhi ami lak chon ani.

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7 और इस रात के लिए हमारा दूसरा सेगमेंट हिंदी के लिए शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट की शुरुआत हम सोनू निगम जी की आवाज से करते हैं जो गाएंगे ये मेरा दिल। तो आइए दोस्तों, हम सभी सुनते हैं ये मेरा दिल गाना।

दोस्तों ये गाना था मेरा दिल चाहे, जिसे गाने वाले हैं सोनू निगम जी, और ये गाना लिया गया है ये नया नया एल्बम से। हमारा अगला गाना होगा इसी एल्बम से लिया गया सोचा सौ दफा, जिसे फिर से गाएंगे सोनू निगम जी। और इस गाने के साथ इस सेगमेंट के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे 10 बजे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी सुन रहे हैं FM Zoo 100.7, मैं हूँ एंजिला। तो हमारा इस सेगमेंट के लिए आखिरी गाना होगा दोस्तों सोनू निगम जी की आवाज से, मैं सोचा सौ दफा, जिसे लिया गया है ये नया नया एल्बम से।

आप सुन रहे हैं एफएम जो 100.7। आज रात के लिए हिंदी का हमारा तीसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट की शुरुआत हम करते हैं बहुत ही सुंदर गाने से, जो है कबीरा, और ये गाना लिया गया है ये जवानी है दीवानी। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में ये जवानी है दीवानी।

दोस्तों, ये गाना था मुझे तो तेरी लत लगे, और ये गाना लिया गया है रेस टू मूवी से। हमारा अगला गाना होगा केके की आवाज में दिल इबादत। दोस्तों, हम सभी आपसे इबादत करते हैं कि आप हमें सुना करिएगा और अंत तक हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, हम सुनते हैं तुम मिले मूवी से लिया गया है दिल इबादत केके जी की आवाज में।

दोस्तों, ये गाना था दिल इबादत, और जिसे गाया है के जी ने। के जी का पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुन्नत, और वो बहुत ही मशहूर है पूरे भारत में अपने गानों के लिए, और सभी को बहुत ही पसंद है। खासकर मुझे तो वो बहुत ही पसंद है, उनके गाने, उनकी आवाज़ें सब। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं अपने प्लेलिस्ट में डालूं, ताकि

आप सभी को भी सुनाऊं और आपको भी अच्छा लगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला गाना होगा अजब प्रेम की गजब कहानी, मूवी से लिया गया है। माफ करिएगा दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा रेस टू की मूवी से लिया गया बे इंतहा, जिसे गाने वाले हैं आतिफ असलाम और सुनिधि चौहान।

दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये गाना लिया गया है रेस 2 की मूवी से, और इसे गाने वाले थे आतिफ असलाम और सुनिधि चौहान। हमारा अगला गाना होगा दोस्ताना मूवी से लिया गया। बहुत ही बिंदास गाना है और एक वक्त में बहुत ही फेमस भी रह चुकी है। ये गाना है शट अप एंड बाउंस। तो दोस्तों, हम सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में दोस्ताना मूवी से लिया गया शट अप एंड बाउंस।

दोस्तों, ये गाना था शट अप एंड बाउंस, जिसे गाने वाले हैं कोई और नहीं द फेमस सुनिधि चौहान, और इस गाने को लिया गया है दोस्ताना मूवी से। हम अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला गाना होगा क्रूक, मूवी से लिया गया है मेरे बिना, और ये गाना मिजोरम में भी बहुत ही फेमस रहा है। हर एक मिजो लोगों के मुंह में ये गाना रहा करता था। तो आप एक और बार सुनेगा, शायद आप भूल चुके हो लेकिन आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। लेकिन इस गाने के साथ, इस सेगमेंट के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7, मैं हूँ RJ एंजिला। आपसे दोबारा फिर मैं मिलूंगी 10 बजे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी तब तक मेरा साथ दोगे। तो दोस्तों, हम सुनते हैं हमारे अगले गाने को, जो है क्रूक मूवी से लिया गया मेरे बिना।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं FM ZO OI 100.7 और इस रात के लिए हमारा सबसे आखिरी सेगमेंट हिंदी का शुरू हो चुका है और मैं हूँ आरजे एंजेला और आप सभी को सुनाने वाली हूँ आसमान मूवी से लाइफ में लफड़ा। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं लाइफ में लफड़ा गाना।

दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में अभी फ़िलहाल कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए हम खेद करते हैं, लेकिन आप नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दूसरा गाना आपके समक्ष लाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने दूसरे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, ठीक है? हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे और मैं सर्च करूंगी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, क्योंकि हमारा प्लेलिस्ट बदकिस्मती से आज रात के लिए गड़बड़ा चुकी है, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम सुनने वाले हैं दुआ गाना। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं दुआ गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने बहुत बहुत बहुत ही मधुर आवाज में, और ये गाना लिया गया है शंघाई मूवी से।

प्यारे दोस्तों, आज शायद पता नहीं क्यों हमारे सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई है, हमें नहीं पता, लेकिन कोई नहीं, हम जारी रखेंगे अपने प्रोग्राम को। हालांकि मैंने कहा था कि मैं दुआ गाना सुनाऊंगी आप सभी को, लेकिन गलती से समझा हुआ जो कि अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया है वो बज गया। लेकिन क्या करें दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे, हम आप सभी के समक्ष बहुत ही सुंदर सुंदर गाना लाना बंद नहीं करेंगे। और अगर गलत गाना बज भी गया तो क्या हुआ, ये जो गाना था वो बहुत ही मधुर था, सभी को ये गाना बहुत ही पसंद है और आज भी ये गाना सभी को पसंद ही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते, हमारा अगला गाना होगा तेरे बिना, जिसे अरिजीत सिंह ने ही गाया है और इसे लिया गया है 1921 मूवी से।

तेरे बिना जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। दोस्तों केवल अरिजीत सिंह ने नहीं बल्कि एक और गायिका है और इस गायिका का नाम है आकांक्षा शर्मा और ये गाना लिया गया है 1921 मूवी से और इसके नायक और नायिका है जरीन खान और करण कुंद्रा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर। हमारा अगला गाना है बहुत बहुत ही फेमस मूवी से जो है कल हो ना हो। तो आइए दोस्तों हम सुनते हैं कल हो ना हो गाना जिसे गाया है सोनू निगम ने।

Baby, I love you. दोस्तों, ये गाना था, जैसा कि हमने बताया आप सभी को पहले, पहली नजर में,

दोस्तों, ये गाना था तुम ही हो, टाइटल ट्रैक सॉन्ग। और हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला गाना होगा जरा सा। आप सभी ने ये गाना कभी सुना है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही, क्योंकि ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस रह चुकी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये गाना पसंद भी आया होगा। तो आइए दोस्तों, हम हमारा इस सेगमेंट के लिए आखिरी गाने को सुनते हैं केके की आवाज़ में, केके और प्रीतम की आवाज़ में ज़रा सा। और इस गाने के साथ हम इस सेगमेंट का, इस रात का अंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7, मैं हूँ RJ एंजेला।